0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें का स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा स्पेन में कर रहे हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरितिक यात्रा का पहला दिन मैड्रिड के राजभवन के दौरे से शुरू हुआ, जहां संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम, रानी लेतीसिया और उनकी 2 बेटियों ने किया। राजभवन में मैड्रिड के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि वे विश्वासियों के बीच सुसमाचार में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्पेन आए हैं, कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शाम को मैड्रिड धर्म प्रांत की सूचना और स्वागत सामाजिक परियोजना केंद्र चेदिया 24 होरास का दौरा किया और वहां करुणा के कार्य में संलग्न लोगों और लाभार्थियों से मुलाकात की। संत पापा लियो ने परिसर में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन कर कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मैड्रिड की अपनी यात्रा शुरू करते हुए मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। महाधर्माध्यक्ष ने जिस भांति कहा कि जो मैड्रिड में है वह मैड्रिड से है, अतः मैं भी यहाँ मैड्रिड वासी की तरह हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि यह विशेषकर इस घर की सच्चाई है, जहाँ कोई भी अकेला नहीं रहता। यहाँ हर व्यक्ति की खुशी और उदासी सबों की खुशी और उदासी बनती है। एक दूसरे को सुनते हुए हम चुनौतियों का सामना एक साथ करते हैं, जटिल परिस्थितियों को नजरअंदाज किए बिना और कभी कभी करुणा और न्याय की मांगों को अनदेखा किए बिना वार्ता के परिवेश में उन लोगों के संग जो मानवता और दुनिया की विशेष चिंता करते हैं हम निवास करते हैं। इस भांति चेदिया सुसमाचार में निहित येसु ख्रीस्त के मार्ग का अनुसरण करता है। संत पापा लियो ने अलीसिया और दूसरे स्वयंसेवियों को आशा की परियोजना हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जिसके द्वारा बहुत सी नारियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः सम्मान, स्वतंत्रता, आशा और मानवीय जीवन के पवित्र मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिली। आगे संत पापा ने कहा कि आज ख्रिस्तीय विभिन्न परिस्थितियों में दुनियावी सोच या राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के आदर्शों के शिकार हो गए हैं, जो हमें घटनाओं को सामान्य और गलत नजरिए से देखने को अग्रसर करते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ लोग करुणा के कार्यों को अपने से दूर या उनकी अवहेलना करते हैं। यह हमें सुसमाचार को पुनः पढ़ने के लिए विश्वस्त करता है, जिससे हम दुनियावी ज्ञान से स्थानांतरित होने की जोखिम में न पड़ें। यदि हम कलीसियाई जीवन के अंदर रहने की चाह रखते, जिसके फल सुसमाचार से हर समय और हर पल उत्पन्न होते हैं, तो हम गरीबों की अवहेलना नहीं कर सकते। हमें दुख सहने वालों की आंखों में झांक कर देखना और उनकी सहायता करना है। उससे भी बढ़कर हमें भाई बहनों से मिलन, जो पिता के आलिंगन में संयुक्त है। दान देना हितकारी कार्य मात्र नहीं है, व्यक्ति जो दान देता है वह अपने लिए अधिक कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अपने को ईश्वर की निगाहों में दृश्यमान बनाता है। संत पापा लियो ने माता मरियम की ओर निगाहें फेरने का आग्रह किया। संत पापा ने उनके सारे कार्यों को माता मरियम के चरणों में समर्पित किया और अंत में उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा के प्रथम पड़ाव के अंतिम चरण में युवाओं के संग जागरण प्रार्थना में भाग लिया और उन्हें अपने संदेश में पृथ्वी का नमक और दुनिया की ज्योति बनने का आह्वान किया। जागरण प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो ने युवाओं के द्वारा पूछे गए 6 सवालों का व्यक्तिगत उत्तर दिया। संत अगुस्टिन और कौन दूसरे संत आपके आदर्श हैं? संत पापा ने अपनी पुरोहिताई प्रशिक्षण और प्रेरिताई के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मैंने अपनी पवित्रता के लिए बहुत सारे आदर्शों को पाया जो अब तक मेरे संग मेरी यात्रा में चलते हैं। मेरे लिए विशेषकर 3 संत गण हैं जिनकी मैं याद करता हूँ। अपने पहले संत संत जॉन क्रिसोस्टम की याद करते हुए उन्होंने कहा, जिसका अर्थ सुनैला मुख है, मैं विशेषकर उनकी शानदार धर्म शिक्षाओं से अपने को प्रभावित पाता हूँ, जिनमें सत्य के लिए प्रेम और एक निष्ठामय जीवन का सम्मिश्रण है। विलानुवा के संत थॉमस अपने दूसरे संत के बारे में संत पापा ने कहा, वेलेंसिया के धर्माध्यक्ष स्वरूप उन्होंने कलिसा के अंदर एक गहरी नवनीकरण की पहल की, विशेषकर याजकों के मध्य उन्होंने अपने पुरोहित भाइयों को प्रार्थना, शुद्धता और आज्ञाकारिता में सुदृढ़ बने रहने का आह्वान किया। उनकी दयालुता मुश्किल के समय मेरे लिए हिम्मत का स्रोत बनता है। अपने तीसरे संत संत तोर्बियुस दे मोग्रोवेजो के बारे में उन्होंने कहा, वे 16वीं सदी में पेरू में प्रेरित के रूप में कार्य किए, जहां उन्होंने बड़े उत्साह के साथ स्थानीय भाषाओं का अध्ययन करते हुए मूल वासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। संत तोर्बियुस ने गहरी प्रार्थना के साथ न्याय के लिए अपने को समर्पित किया, खासकर अपने समय के शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसी कारण वे मेरे लिए एक समर्पित आदर्श के रूप में हैं, विशेषकर गरीबों के लिए। पेरू में अपने प्रेरिताई और एक धर्माध्यक्ष के रूप में अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा ने कहा, मैं लोगों के विश्वास के साक्ष्य की याद करता हूँ, एक विश्वास जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी यह आशा से भरी है। बहुत सारी आवाजों के बीच ईश्वर की आवाज को पहचानने पर पूछे गए सवाल के बारे में संत पापा ने कहा,
3: Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos ante todo el silencio.
1: ईश्वर की आवाज को पहचानने में शांति हमें सबसे अधिक मदद करती है। शांति में हम इस बात को समझते हैं कि आदर्शें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ सच्चाई सदैव बनी रहती है। हम सभी शांति की खोज करते हैं। संत पापा ने कहा कि आप इस बात से सुनिश्चित हों कि आप ईश्वर की आवाज को पहचानते हों, वे आपको सुनते और आपको जवाब देते हैं। आप अपने हृदय में जो अनुभव करते हैं उसे व्यक्त करें। जब हम स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं तो यीशु अपने वचनों से हमें उत्तर देते हैं। संत पापा ने कहा, ईश्वर को पहचानने के लिए हमें उनके जीवित वचनों को सुनने की आवश्यकता है। यीशु ख्रिस्त जिनकी आवाज निरंतर कलिसिया में गूंजती रहती है उनके शरीर के रूप में। यूखरिस्त की आराधना शांति का एक श्रेष्ठ स्थान है, हमारे हृदयों को खोलने का और स्वयं अपने को ईश्वर की उपस्थिति में लाने का, उनसे प्रेम और बातें करने का जो सारी मानवता के लिए पोषण स्वरूप परिवर्तित किए गए हैं। संत पापा ने कहा, आप दूसरों को विश्वास की सुंदरता खोजने में मदद करते हैं। आप याद रखें, हम में से कोई शिक्षक की भांति जन्म नहीं लिया है और ईश्वर के सामने हम सभी उनके शिष्य गण हैं। यदि आप प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो युवा जन प्रार्थना की महत्वपूर्णता को पहचानेंगे। यदि आपका विश्वास आपके अंदर प्रज्वलित है तो आप उस जीवित आग को दूसरों के लिए बांटेंगे। यदि आप अपनी बुलाहट के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं तो आप कृपा की सुंदरता को प्रतिबिंबित करेंगे। समर्पित ख्रिस्तियों के रूप में जीवन यापन करने के प्रश्न का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा, यीशु के शिष्य सदैव वर्तमान समय के लोग हैं, वे अतीत के गुलाम कभी नहीं हैं। हम यीशु ख्रिस्त में स्वतंत्र हैं, हम प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं, हम जबरदस्ती और धोखा से मुक्त हैं। इस परिदृश्य में आप युवागण समाज को एक नई दिशा में लेने हेतु बुलाए जाते हैं। आप जो जीवन घर, महाविद्यालय और कार्यस्थल में जीते हैं, अपने प्रतिदिन के संबंधों द्वारा आप मुख्य रूप से जीवन में परिवर्तन लाने की मुख्य कड़ी बनते हैं। संत पापा ने कहा, आप पृथ्वी के लिए नमक और दुनिया की ज्योति बने। ऐसा होने के लिए आपको आज की दुनिया को समझने और विवेक में जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह विशेष प्रेरिताई को मैं आपको सौंपता हूँ, आप मानवीय बने। लोग न्याय की चाह रखते हैं क्योंकि वे इसके भूखे हैं। लोग ईमानदारी और सत्यनिष्ठ जीवन की चाह रखते हैं क्योंकि वे खुशी से दूसरों के लिए वह करते हैं जिसे वे दूसरों के द्वारा अपने लिए किए जाने की चाह रखते हैं। आप यीशु की तरह मानवीय बने, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो मृतकों में से जी उठकर हमारे संग जीवन साझा करते हैं। उन्होंने कहा,
3: vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor. Muchas gracias.
1: यह वह गुण है जो इतिहास को पूरी तरह परिवर्तित करेगा।
2: अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो ने युवाओं के क्रूस के पीछे हस्ताक्षर किया और थोड़ी देर बाद मधुर संगीत के साथ पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि शुरू हुई। संत पापा ने पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि का अनुष्ठान किया और रात करीब 11 बजे संत पापा रात्रि विश्राम के लिए प्रेरितिक राजदूतावास लौटे। रविवार 7 जून कैथोलिक कलीसिया कॉर्पस क्रिस्टी यानी यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। रविवार सुबह करीब 9:15 बजे प्रेरितिक राजदूतावास से कॉर्पस क्रिस्टी मिसा समारोह का अनुष्ठान करने मशहूर प्लाजा दे सिबेलस के लिए निकले। प्लाजा दे सिबेलस राजधानी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। संत पापा लियो पापा मोबाइल में मैड्रिड की सड़कों पर विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कुछ बच्चों को पुचकारते और आशीर्वाद देते हुए प्लाजा दे सिबेलस के चौक पर बने स्टेज पर पहुंचे और करीब 10:15 बजे संत पापा लियो की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह शुरू हुआ।
4: Con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
5: जब मैं स्पेन की प्रेरितिक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैं आनंदित हृदय से ख्रिस्त के पावनतम शरीर के महापर्व पर इस समारोह का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हम यूखरिस्त के चारों ओर एकत्रित हैं, जो हमारे बीच ख्रिस्त की जीवित उपस्थिति का उपहार है। उन्होंने हमें अपना जीवन अर्पित करना चाहा ताकि हम पिता से मिल सकें और उनके बच्चे बन सकें। वे जीवित रोटी के रूप में स्वर्ग से उतरे, जिससे कि हमें ईश्वर के जीवन से मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेम से पोषित कर सकें। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त रोटी में प्रभु की उपस्थिति का यह एहसास स्पेन के लोगों के विश्वास एवं इतिहास में गहराई से जुड़ा है। स्पेन के कई दूसरे हिस्सों की तरह मैड्रिड में ख्रिस्त के पावनतम शरीर का महापर्व पूजन पद्धति कैलेंडर के अन्य पर्वों से बढ़कर है। यह विश्वास के केंद्र में लौटने का एक तरीका है ताकि हम ईश्वर के प्रति अपने प्यार एवं निष्ठा को फिर जगा सकें। संत पापा याद करते हैं कि इस दिन होने वाले पौत्र शोभा यात्रा ने सदियों से स्पेन के लोगों की भक्ति कला संगीत वास्तुकला एवं जीवन को आकार दिया है। आज भी वे फूलों की कालीन सड़कों पर बनी वेदियों मॉन्स्ट्रांस और भजनों तथा पौत्र मिसा के परिधानों की सुंदरता के माध्यम से इस देश की आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने माना कि यह कोई दिखावा लोक कथाओं का बचा हुआ हिस्सा या सुंदरता का प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति में विश्वास की अभिव्यक्ति है जो जीवित हैं और हमारे बीच चलते हैं, जो जीवन की हमारी भूख मिटाने के लिए रोटी बन जाते हैं और हमारे दिलों एवं इतिहास के उन जगहों पर भी आते हैं जो अंधकार से घिरे हैं। जिस प्रकार पौत्र यूखरिस्त में ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए अपने आप को भोजन के रूप में देते हैं, पौत्र संस्कार की शोभा यात्रा दिखाती है कि वे सिर्फ गिरजाघर में बंद नहीं हैं, बल्कि हमसे मिलने बाहर आते हैं। यीशु सड़कों पर घूमते हैं, चौक पार करते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। वे एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमारे करीब हैं, जो अपने लोगों के साथ चलते हैं। वे इतिहास के प्रभु हैं। वे दुर्बलों के लिए आराम हैं, परिवारों के लिए रोशनी, बीमारों के लिए उम्मीद, और जो लोग दुख झेल रहे हैं उनके लिए शांति हैं। मसीह जो पौत्र संस्कार में सड़कों से गुजरते हैं, गरीबों, दबे कुचले लोगों, अकेले और परित्यक्त लोगों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोभा यात्रा पौत्र संस्कार को सिर्फ बाहर निकालना नहीं, बल्कि अपने आप को अपने स्वार्थ और उदासीनता से, एक आरामदायक स्थिति से, आत्मविश्वास से ऊपर उठाना है, ताकि हम मन परिवर्तन के उनके निमंत्रण का प्रत्युत्तर दे सकें, अपना दृष्टिकोण बदल सकें और उनकी उपस्थिति का स्वागत कर सकें, जो हमें बदल देते और हमें एक नई दुनिया के निर्माता बनाते हैं। यही कारण है कि ख्रिस्त के पावन शरीर की शोभा यात्रा की ऐतिहासिक याद सिर्फ पुरानी याद नहीं, बल्कि आज के समय में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रिश्तों में, समाज में और भविष्य के निर्माण में एक बुलावा है। इसी संदर्भ में हम पहले पाठ में याद रखने के निमंत्रण को समझते हैं। याद रखो कि जब तुम भूखे थे तो उन्होंने तुम्हें मन्ना खिलाया। हमें इसे याद रखना चाहिए, ताकि हम यह ना बोलें कि प्रभु कौन है, ताकि हम दूसरी देव मूर्तियों पर भरोसा करने और ऐसी रोटी खाने के लालच में ना पड़ें जो संतुष्ट नहीं कर सकती। संत पापा ने स्पेन के विश्वासियों से कहा,
4: Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país sea del pasado que visitar.
5: आज और भविष्य में स्पेन का काम यही है, यह सुदृढ़ करना कि जिस धार्मिकता ने सदियों से इस देश को बनाया और बताया है, वह अतीत का संग्रहालय ना रहे जिसका दर्शन किया जाता, बल्कि विश्वास का स्कूल हो जहां से आज भी कुछ सीखा जा सके। एक ऐसा स्कूल जो हमें ईश्वर और अपने पड़ोसी के सामने झुकना सिखाए, क्योंकि कोई भी ईश्वर के सामने झुककर अपने भाई को नीचा नहीं समझ सकता। एक ऐसा स्कूल जो हमें मुफ्त प्रेम की कीमत सिखाए, जो एक उपहार बन जाता है, जिससे कि यह हमारे बीच बहे और सभी स्वार्थ के जंजीरों को तोड़ दे। एक ऐसा स्कूल जहां से हम सीख सकें कि ईश्वर एक सच्ची उपस्थिति है और हमें भी समाज की सच्चाइयों और चुनौतियों में उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया है। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त यीशु वह शाश्वत झरना है जो छिपा हुआ है, एक ऐसा झरना जो बहता है और प्यास बुझाता है, लेकिन किसी को अंधा नहीं बनाता, बाहरी शक्ति के द्वारा खुद को नहीं थोपता, ना ही खुद को शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्पेन के सभी विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम सच्चे प्यार के साथ उनके पास लौटें, हम उनसे मिलने के लिए खुद को खोलें, उन्हें अपने दिल की प्यास बुझाने दें। यूखरिस्ते कृपा हमें बदल देती है, हमें इतिहास के बदलाव का हीरो बनाती है, हमें उन लोगों के लिए आशा की निशानी बनाती है जिनसे हम मिलते हैं। और अंत में संत पापा ने कहा, यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु येसु आपको तोड़ी प्रदान की गई और अर्पित रोटी में बदल दें, ताकि आपके लिए, आपके परिवारों के लिए और आपके देश के लिए परिपूर्ण जीवन फले फूले।
2: संत पापा ने पौत्र मिसा समारोह के अंत में प्रांगण में कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस की अगुवाई की। कॉर्पस क्रिस्टी समारोह के बाद संत पापा प्रेरितिक राजदूतावास लौटे और शाम 4:30 बजे संत अगुस्टीन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मुलाकात की। बाद में शाम को 6 बजे मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, व्यापार और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें का स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा स्पेन में कर रहे हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरितिक यात्रा का पहला दिन मैड्रिड के राजभवन के दौरे से शुरू हुआ, जहां संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम, रानी लेतीसिया और उनकी 2 बेटियों ने किया। राजभवन में मैड्रिड के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि वे विश्वासियों के बीच सुसमाचार में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्पेन आए हैं, कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शाम को मैड्रिड धर्म प्रांत की सूचना और स्वागत सामाजिक परियोजना केंद्र चेदिया 24 होरास का दौरा किया और वहां करुणा के कार्य में संलग्न लोगों और लाभार्थियों से मुलाकात की। संत पापा लियो ने परिसर में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन कर कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मैड्रिड की अपनी यात्रा शुरू करते हुए मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। महाधर्माध्यक्ष ने जिस भांति कहा कि जो मैड्रिड में है वह मैड्रिड से है, अतः मैं भी यहाँ मैड्रिड वासी की तरह हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि यह विशेषकर इस घर की सच्चाई है, जहाँ कोई भी अकेला नहीं रहता। यहाँ हर व्यक्ति की खुशी और उदासी सबों की खुशी और उदासी बनती है। एक दूसरे को सुनते हुए हम चुनौतियों का सामना एक साथ करते हैं। जटिल परिस्थितियों को नजरअंदाज किए बिना और कभी कभी करुणा और न्याय की मांगों को अनदेखा किए बिना वार्ता के परिवेश में उन लोगों के संग जो मानवता और दुनिया की विशेष चिंता करते हैं हम निवास करते हैं। इस भांति चेदिया सुसमाचार में निहित येसु ख्रीस्त के मार्ग का अनुसरण करता है। संत पापा लियो ने अलीसिया और दूसरे स्वयंसेवियों को आशा की परियोजना हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जिसके द्वारा बहुत सी नारियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः सम्मान, स्वतंत्रता, आशा और मानवीय जीवन के पवित्र मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिली। आगे संत पापा ने कहा कि आज ख्रिस्तीय विभिन्न परिस्थितियों में दुनियावी सोच या राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के आदर्शों के शिकार हो गए हैं, जो हमें घटनाओं को सामान्य और गलत नजरिए से देखने को अग्रसर करते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ लोग करुणा के कार्यों को अपने से दूर या उनकी अवहेलना करते हैं। यह हमें सुसमाचार को पुनः पढ़ने के लिए विश्वस्त करता है, जिससे हम दुनियावी ज्ञान से स्थानांतरित होने की जोखिम में न पड़ें। यदि हम कलीसियाई जीवन के अंदर रहने की चाह रखते, जिसके फल सुसमाचार से हर समय और हर पल उत्पन्न होते हैं, तो हम गरीबों की अवहेलना नहीं कर सकते। हमें दुख सहने वालों की आंखों में झांक कर देखना और उनकी सहायता करना है। उससे भी बढ़कर हमें भाई बहनों से मिलन, जो पिता के आलिंगन में संयुक्त है। दान देना हितकारी कार्य मात्र नहीं है, व्यक्ति जो दान देता है वह अपने लिए अधिक कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अपने को ईश्वर की निगाहों में दृश्यमान बनाता है। संत पापा लियो ने माता मरियम की ओर निगाहें फेरने का आग्रह किया। संत पापा ने उनके सारे कार्यों को माता मरियम के चरणों में समर्पित किया और अंत में उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा के प्रथम पड़ाव के अंतिम चरण में युवाओं के संग जागरण प्रार्थना में भाग लिया और उन्हें अपने संदेश में पृथ्वी का नमक और दुनिया की ज्योति बनने का आह्वान किया। जागरण प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो ने युवाओं के द्वारा पूछे गए 6 सवालों का व्यक्तिगत उत्तर दिया। संत अगुस्टिन और कौन दूसरे संत आपके आदर्श हैं? संत पापा ने अपनी पुरोहिताई प्रशिक्षण और प्रेरिताई के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मैंने अपनी पवित्रता के लिए बहुत सारे आदर्शों को पाया जो अब तक मेरे संग मेरी यात्रा में चलते हैं। मेरे लिए विशेषकर 3 संत गण हैं जिनकी मैं याद करता हूँ। अपने पहले संत संत जॉन क्रिसोस्टम की याद करते हुए उन्होंने कहा, जिसका अर्थ सुनैला मुख है, मैं विशेषकर उनकी शानदार धर्म शिक्षाओं से अपने को प्रभावित पाता हूँ, जिनमें सत्य के लिए प्रेम और एक निष्ठामय जीवन का सम्मिश्रण है। विलानुवा के संत थॉमस अपने दूसरे संत के बारे में संत पापा ने कहा, वेलेंसिया के धर्माध्यक्ष स्वरूप उन्होंने कलिसा के अंदर एक गहरी नवनीकरण की पहल की, विशेषकर याजकों के मध्य उन्होंने अपने पुरोहित भाइयों को प्रार्थना, शुद्धता और आज्ञाकारिता में सुदृढ़ बने रहने का आह्वान किया। उनकी दयालुता मुश्किल के समय मेरे लिए हिम्मत का स्रोत बनता है। अपने तीसरे संत संत तोर्बियुस दे मोग्रोवेजो के बारे में उन्होंने कहा, वे 16वीं सदी में पेरू में प्रेरित के रूप में कार्य किए, जहां उन्होंने बड़े उत्साह के साथ स्थानीय भाषाओं का अध्ययन करते हुए मूल वासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। संत तोर्बियुस ने गहरी प्रार्थना के साथ न्याय के लिए अपने को समर्पित किया, खासकर अपने समय के शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसी कारण वे मेरे लिए एक समर्पित आदर्श के रूप में हैं, विशेषकर गरीबों के लिए। पेरू में अपने प्रेरिताई और एक धर्माध्यक्ष के रूप में अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा ने कहा, मैं लोगों के विश्वास के साक्ष्य की याद करता हूँ, एक विश्वास जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी यह आशा से भरी है। बहुत सारी आवाजों के बीच ईश्वर की आवाज को पहचानने पर पूछे गए सवाल के बारे में संत पापा ने कहा,
3: Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos ante todo el silencio.
1: ईश्वर की आवाज को पहचानने में शांति हमें सबसे अधिक मदद करती है। शांति में हम इस बात को समझते हैं कि आदर्शें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ सच्चाई सदैव बनी रहती है। हम सभी शांति की खोज करते हैं। संत पापा ने कहा कि आप इस बात से सुनिश्चित हों कि आप ईश्वर की आवाज को पहचानते हों, वे आपको सुनते और आपको जवाब देते हैं। आप अपने हृदय में जो अनुभव करते हैं उसे व्यक्त करें। जब हम स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं तो यीशु अपने वचनों से हमें उत्तर देते हैं। संत पापा ने कहा, ईश्वर को पहचानने के लिए हमें उनके जीवित वचनों को सुनने की आवश्यकता है। यीशु ख्रिस्त जिनकी आवाज निरंतर कलिसिया में गूंजती रहती है उनके शरीर के रूप में। यूखरिस्त की आराधना शांति का एक श्रेष्ठ स्थान है, हमारे हृदयों को खोलने का और स्वयं अपने को ईश्वर की उपस्थिति में लाने का, उनसे प्रेम और बातें करने का जो सारी मानवता के लिए पोषण स्वरूप परिवर्तित किए गए हैं। संत पापा ने कहा, आप दूसरों को विश्वास की सुंदरता खोजने में मदद करते हैं। आप याद रखें, हम में से कोई शिक्षक की भांति जन्म नहीं लिया है और ईश्वर के सामने हम सभी उनके शिष्य गण हैं। यदि आप प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो युवा जन प्रार्थना की महत्वपूर्णता को पहचानेंगे। यदि आपका विश्वास आपके अंदर प्रज्वलित है तो आप उस जीवित आग को दूसरों के लिए बांटेंगे। यदि आप अपनी बुलाहट के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं तो आप कृपा की सुंदरता को प्रतिबिंबित करेंगे। समर्पित ख्रिस्तियों के रूप में जीवन यापन करने के प्रश्न का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा, यीशु के शिष्य सदैव वर्तमान समय के लोग हैं, वे अतीत के गुलाम कभी नहीं हैं। हम यीशु ख्रिस्त में स्वतंत्र हैं, हम प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं, हम जबरदस्ती और धोखा से मुक्त हैं। इस परिदृश्य में आप युवागण समाज को एक नई दिशा में लेने हेतु बुलाए जाते हैं। आप जो जीवन घर, महाविद्यालय और कार्यस्थल में जीते हैं, अपने प्रतिदिन के संबंधों द्वारा आप मुख्य रूप से जीवन में परिवर्तन लाने की मुख्य कड़ी बनते हैं। संत पापा ने कहा, आप पृथ्वी के लिए नमक और दुनिया की ज्योति बने। ऐसा होने के लिए आपको आज की दुनिया को समझने और विवेक में जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह विशेष प्रेरिताई को मैं आपको सौंपता हूँ, आप मानवीय बने। लोग न्याय की चाह रखते हैं क्योंकि वे इसके भूखे हैं। लोग ईमानदारी और सत्यनिष्ठ जीवन की चाह रखते हैं क्योंकि वे खुशी से दूसरों के लिए वह करते हैं जिसे वे दूसरों के द्वारा अपने लिए किए जाने की चाह रखते हैं। आप यीशु की तरह मानवीय बने, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो मृतकों में से जी उठकर हमारे संग जीवन साझा करते हैं। उन्होंने कहा,
3: vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor. Muchas gracias.
1: यह वह गुण है जो इतिहास को पूरी तरह परिवर्तित करेगा।
2: अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो ने युवाओं के क्रूस के पीछे हस्ताक्षर किया और थोड़ी देर बाद मधुर संगीत के साथ पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि शुरू हुई। संत पापा ने पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि का अनुष्ठान किया और रात करीब 11 बजे संत पापा रात्रि विश्राम के लिए प्रेरितिक राजदूतावास लौटे। रविवार 7 जून कैथोलिक कलीसिया कॉर्पस क्रिस्टी यानी यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। रविवार सुबह करीब 9:15 बजे प्रेरितिक राजदूतावास से कॉर्पस क्रिस्टी मिसा समारोह का अनुष्ठान करने मशहूर प्लाजा दे सिबेलस के लिए निकले। प्लाजा दे सिबेलस राजधानी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। संत पापा लियो पापा मोबाइल में मैड्रिड की सड़कों पर विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कुछ बच्चों को पुचकारते और आशीर्वाद देते हुए प्लाजा दे सिबेलस के चौक पर बने स्टेज पर पहुंचे और करीब 10:15 बजे संत पापा लियो की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह शुरू हुआ।
4: Con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España.
5: जब मैं स्पेन की प्रेरितिक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैं आनंदित हृदय से ख्रिस्त के पावनतम शरीर के महापर्व पर इस समारोह का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हम यूखरिस्त के चारों ओर एकत्रित हैं, जो हमारे बीच ख्रिस्त की जीवित उपस्थिति का उपहार है। उन्होंने हमें अपना जीवन अर्पित करना चाहा ताकि हम पिता से मिल सकें और उनके बच्चे बन सकें। वे जीवित रोटी के रूप में स्वर्ग से उतरे, जिससे कि हमें ईश्वर के जीवन से मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेम से पोषित कर सकें। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्ट रोटी में प्रभु की उपस्थिति का यह एहसास स्पेन के लोगों के विश्वास एवं इतिहास में गहराई से जुड़ा है। स्पेन के कई दूसरे हिस्सों की तरह मैड्रिड में ख्रिस्त के पावनतम शरीर का महापर्व पूजन पद्धति कैलेंडर के अन्य पर्वों से बढ़कर है। यह विश्वास के केंद्र में लौटने का एक तरीका है ताकि हम ईश्वर के प्रति अपने प्यार एवं निष्ठा को फिर जगा सकें। संत पापा याद करते हैं कि इस दिन होने वाले पौत्र शोभा यात्रा ने सदियों से स्पेन के लोगों की भक्ति कला, संगीत, वास्तुकला एवं जीवन को आकार दिया है। आज भी वे फूलों की कालीन सड़कों पर बनी वेदियों, मॉन्स्ट्रांस और भजनों तथा पौत्र मिसा के परिधानों की सुंदरता के माध्यम से इस देश की आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने माना कि यह कोई दिखावा, लोक कथाओं का बचा हुआ हिस्सा या सुंदरता का प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति में विश्वास की अभिव्यक्ति है, जो जीवित हैं और हमारे बीच चलते हैं, जो जीवन की हमारी भूख मिटाने के लिए रोटी बन जाते हैं और हमारे दिलों एवं इतिहास के उन जगहों पर भी आते हैं जो अंधकार से घिरे हैं। जिस प्रकार पौत्र यूखरिस्त में ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए अपने आप को भोजन के रूप में देते हैं, पौत्र संस्कार की शोभा यात्रा दिखाती है कि वे सिर्फ गिरजाघर में बंद नहीं हैं, बल्कि हमसे मिलने बाहर आते हैं। यीशु सड़कों पर घूमते हैं, चौक पार करते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। वे एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमारे करीब हैं, जो अपने लोगों के साथ चलते हैं। वे इतिहास के प्रभु हैं। वे दुर्बलों के लिए आराम हैं, परिवारों के लिए रोशनी, बीमारों के लिए उम्मीद, और जो लोग दुख झेल रहे हैं उनके लिए शांति हैं। मसीह जो पौत्र संस्कार में सड़कों से गुजरते हैं, गरीबों, दबे कुचले लोगों, अकेले और परित्यक्त लोगों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोभा यात्रा पौत्र संस्कार को सिर्फ बाहर निकालना नहीं, बल्कि अपने आप को अपने स्वार्थ और उदासीनता से, एक आरामदायक स्थिति से, आत्मविश्वास से ऊपर उठाना है, ताकि हम मन परिवर्तन के उनके निमंत्रण का प्रत्युत्तर दे सकें, अपना दृष्टिकोण बदल सकें और उनकी उपस्थिति का स्वागत कर सकें, जो हमें बदल देते और हमें एक नई दुनिया के निर्माता बनाते हैं। यही कारण है कि ख्रिस्त के पावन शरीर की शोभा यात्रा की ऐतिहासिक याद सिर्फ पुरानी याद नहीं, बल्कि आज के समय में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रिश्तों में, समाज में और भविष्य के निर्माण में एक बुलावा है। इसी संदर्भ में हम पहले पाठ में याद रखने के निमंत्रण को समझते हैं। याद रखो कि जब तुम भूखे थे तो उन्होंने तुम्हें मन्ना खिलाया। हमें इसे याद रखना चाहिए, ताकि हम यह ना बोलें कि प्रभु कौन है, ताकि हम दूसरी देव मूर्तियों पर भरोसा करने और ऐसी रोटी खाने के लालच में ना पड़ें जो संतुष्ट नहीं कर सकती। संत पापा ने स्पेन के विश्वासियों से कहा
4: कि la religiosidad que desde hace siglos anima este país sea del pasado que visitar।
5: आज और भविष्य में स्पेन का काम यही है, यह सुदृढ़ करना कि जिस धार्मिकता ने सदियों से इस देश को बनाया और बताया है, वह अतीत का संग्रहालय ना रहे जिसका दर्शन किया जाता, बल्कि विश्वास का स्कूल हो जहां से आज भी कुछ सीखा जा सके। एक ऐसा स्कूल जो हमें ईश्वर और अपने पड़ोसी के सामने झुकना सिखाए, क्योंकि कोई भी ईश्वर के सामने झुककर अपने भाई को नीचा नहीं समझ सकता। एक ऐसा स्कूल जो हमें मुफ्त प्रेम की कीमत सिखाए, जो एक उपहार बन जाता है, जिससे कि यह हमारे बीच बहे और सभी स्वार्थ के जंजीरों को तोड़ दे। एक ऐसा स्कूल जहां से हम सीख सकें कि ईश्वर एक सच्ची उपस्थिति है और हमें भी समाज की सच्चाइयों और चुनौतियों में उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया है। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त यीशु वह शाश्वत झरना है जो छिपा हुआ है, एक ऐसा झरना जो बहता है और प्यास बुझाता है, लेकिन किसी को अंधा नहीं बनाता, बाहरी शक्ति के द्वारा खुद को नहीं थोपता, ना ही खुद को शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्पेन के सभी विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम सच्चे प्यार के साथ उनके पास लौटें, हम उनसे मिलने के लिए खुद को खोलें, उन्हें अपने दिल की प्यास बुझाने दें। यूखरिस्ते कृपा हमें बदल देती है, हमें इतिहास के बदलाव का हीरो बनाती है, हमें उन लोगों के लिए आशा की निशानी बनाती है जिनसे हम मिलते हैं। और अंत में संत पापा ने कहा, यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु येसु आपको तोड़ी प्रदान की गई और अर्पित रोटी में बदल दें, ताकि आपके लिए, आपके परिवारों के लिए और आपके देश के लिए परिपूर्ण जीवन फले फूले।
2: संत पापा ने पौत्र मिसा समारोह के अंत में प्रांगण में कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस की अगुवाई की। कॉर्पस क्रिस्टी समारोह के बाद संत पापा प्रेरितिक राजदूतावास लौटे और शाम 4:30 बजे संत अगुस्टीन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मुलाकात की। बाद में शाम को 6 बजे मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, व्यापार और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: श्री रोम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओ, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित की यात्रा पर हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरित यात्रा के पहले पड़ाव मैड्रिड में तीसरे दिन आज सोमवार को संत पापा का कार्यक्रम इस प्रकार है। आज 10:30 बजे मैड्रिड के संसद भवन में संसद के सदस्यों को संबोधन, 11:30 बजे स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में स्पेन के धर्माध्यक्षों से मुलाकात, 6:00 बजे सांता मरिया ला रियल डे ला अल्मुडेना महागिरजाघर में प्रार्थना और संत पापा का उपदेश, और 7:00 बजे संत पापा संतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय को संबोधित करेंगे। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने कला, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए समय निकाला और उन्हें तेजी से बिखरती दुनिया में एकजुटता, बातचीत और उम्मीद के बंधन बनाने में नए हीरो बनने के लिए आमंत्रित किया। मैड्रिड के मोविस्टार स्टेडियम में संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के साथ नेटवर्क बुनना नामक कार्यक्रम में कलाकार, शिक्षाविद, व्यवसाय नेतागण, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और एथलीट एक साथ आए और कलीसिया एवं आज के समाज के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के मकसद से बातचीत की। वक्ताओं की बातें सुनने के साथ साथ मशहूर डांसर सारा बारास और उनके दल द्वारा फ्लेमको संगीत और नृत्य देखने के बाद संत पापा लियो ने अपना भाषण स्पेन की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करते हुए शुरू किया, जिसमें देश की इतिहास में भुनी सुंदरता की बात की गई। फिर भी उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ियों की कामयाबियों की तारीफ से एक ऐसा सवाल जरूर उठता है जो हर किसी को परेशान करता है, हम भविष्य के लिए क्या विरासत छोड़ रहे हैं और इसके अलावा हम किस तरह का समुदाय बना रहे हैं। संत पापा ने समाज में नव परिवर्तन और संचार की जबरदस्त क्षमता को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर प्रौद्योगिकीय और आर्थिक प्रगति इंसान से अलग हो जाती है तो वे अपना गहरा मकसद खो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम मीडिया में विशेषज्ञ और प्रभावी उत्पादक बनने की जोखिम उठाते हैं, फिर भी यह पक्का नहीं होता कि हम क्यों, किस मकसद से, किसके साथ और किसके लिए उत्पादन करते हैं। हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका हुमानिटास का जिक्र करते हुए संत पापा ने जोर देकर कहा कि इंसान कलीसिया के लिए रास्ता और सच्चा अभिन्न विकास का केंद्र बना हुआ है। इस वजह से कलीसिया संस्कृति को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कृति ही उन खास तरीकों में से एक है जिससे इंसान अपनी पहचान जाहिर करता है और उसे आकार देता है। संस्कृति और कृषि शब्दों के बीच के संबंध पर विचार करते हुए संत पापा ने अपने दर्शकों को यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि आज का समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बो रहा है। उन्होंने पूछा, हमारे समाज में क्या फल फूल रहा है और क्या चुपचाप मुरझा रहा है, हम किन मूल्यों को बचा रहे हैं और किन को मरने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों के लिए सुनने, सम्मान और मिलने जुलने पर आधारित एक ईमानदार और लगातार सामाजिक वार्ता की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय नजरिए से असली बातचीत हर इंसान की अंदरूनी गरिमा को पहचानने से शुरू होती है। सृष्टिकर्ता ने इंसानों को प्यार के धागों से बुना है, यह याद दिलाते हुए कि मानव ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया है। संत पापा ने आगे कहा, यह गरिमा संस्थाओं और सरकारों से नहीं मिलती, बल्कि यह अंदर से आती है और जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह हर सच्चे सामाजिक रिश्ते की नींव बनती है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की इस बात का हवाला देते हुए कि विश्वास कविता और संगीत बनाता है और सौंदर्य बनाता है, संत पापा लियो ने उन अनुभवों के बारे में बात की जो लोगों को अंदर से बदल देते हैं। एक गाना, एक कविता, एक गिरजाघर, एक आवाज, एक नजर और दोस्तों के बीच साझा किया गया एक खेल भी। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जो खुद एक एथलीट थे, के शब्दों को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि खेल एकता, शांति, सामाजिक मेलजोल का एक मजबूत सबूत दे सकता है। ऐसे समय में जब हिंसा और बंटवारा समुदायों को एक साथ रखने वाले रिश्तों के लिए खतरा बन रहे हैं। अपना भाषण समाप्त करते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद सभी लोगों से एक नए समाज को बनाने में हीरो बनने की अपील की। उन्होंने कहा, एक ऐसा समाज जहां समय हमेशा के लिए खुला रहे, जहां संस्कृति यादों को संभाल कर रखे और बातचीत को बढ़ावा दे, जहां शिक्षा बौद्धिक ईमानदारी के साथ सच का पीछा करे, जहां कला आश्चर्य जगाए, जहां व्यापार हर इंसान की गरिमा को पहचाने और जहां काम उम्मीद का जरिया बना रहे, क्योंकि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानियत की सच्ची महानता चमकती रहती है या नहीं। आइए हम जीवन के सभी हिस्सों में तालमेल बिठाने वाले नए नेटवर्क बुनने के लिए नए हीरो बने। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा ने सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और रात्रि विश्राम के लिए मैड्रिड के प्रेरितिक राजदूतावास लौट गए।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित की यात्रा पर हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरित यात्रा के पहले पड़ाव मैड्रिड में तीसरे दिन आज सोमवार को संत पापा का कार्यक्रम इस प्रकार है। आज 10:30 बजे मैड्रिड के संसद भवन में संसद के सदस्यों को संबोधन, 11:30 बजे स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में स्पेन के धर्माध्यक्षों से मुलाकात, 6:00 बजे सांता मरिया ला रियल डे ला अल्मुडेना महागिरजाघर में प्रार्थना और संत पापा का उपदेश, और 7:00 बजे संत पापा संतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय को संबोधित करेंगे। स्पेन की अपनी प्रेरित यात्रा के दूसरे दिन संत पापा लियो 14वें ने कला, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए समय निकाला और उन्हें तेजी से बिखरती दुनिया में एकजुटता, बातचीत और उम्मीद के बंधन बनाने में नए हीरो बनने के लिए आमंत्रित किया। मैड्रिड के मोविस्टार स्टेडियम में संस्कृति, कला, अर्थव्यवस्था और खेल की दुनिया के साथ नेटवर्क बुनना नामक कार्यक्रम में कलाकार, शिक्षाविद, व्यवसाय नेतागण, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और एथलीट एक साथ आए और कलीसिया एवं आज के समाज के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के मकसद से बातचीत की। वक्ताओं की बातें सुनने के साथ साथ मशहूर डांसर सारा बारास और उनके दल द्वारा फ्लेमको संगीत और नृत्य देखने के बाद संत पापा लियो ने अपना भाषण स्पेन की बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करते हुए शुरू किया, जिसमें देश की इतिहास में भुनी सुंदरता की बात की गई। फिर भी उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ियों की कामयाबियों की तारीफ से एक ऐसा सवाल जरूर उठता है जो हर किसी को परेशान करता है, हम भविष्य के लिए क्या विरासत छोड़ रहे हैं और इसके अलावा हम किस तरह का समुदाय बना रहे हैं। संत पापा ने समाज में नव परिवर्तन और संचार की जबरदस्त क्षमता को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर प्रौद्योगिकीय और आर्थिक प्रगति इंसान से अलग हो जाती है तो वे अपना गहरा मकसद खो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम मीडिया में विशेषज्ञ और प्रभावी उत्पादक बनने की जोखिम उठाते हैं, फिर भी यह पक्का नहीं होता कि हम क्यों, किस मकसद से, किसके साथ और किसके लिए उत्पादन करते हैं। हाल ही में प्रकाशित विश्व पत्र मैग्निफिका हुमानितास का जिक्र करते हुए संत पापा ने जोर देकर कहा कि इंसान कलीसिया के लिए रास्ता और सच्चा अभिन्न विकास का केंद्र बना हुआ है। इस वजह से कलीसिया संस्कृति को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि संस्कृति ही उन खास तरीकों में से एक है जिससे इंसान अपनी पहचान जाहिर करता है और उसे आकार देता है। संस्कृति और कृषि शब्दों के बीच के संबंध पर विचार करते हुए संत पापा ने अपने दर्शकों को यह सोचने के लिए आमंत्रित किया कि आज का समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बो रहा है। उन्होंने पूछा, हमारे समाज में क्या फल फूल रहा है और क्या चुपचाप मुरझा रहा है, हम किन मूल्यों को बचा रहे हैं और किन को मरने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों के लिए सुनने, सम्मान और मिलने जुलने पर आधारित एक ईमानदार और लगातार सामाजिक वार्ता की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय नजरिए से असली बातचीत हर इंसान की अंदरूनी गरिमा को पहचानने से शुरू होती है। सृष्टिकर्ता ने इंसानों को प्यार के धागों से बुना है, यह याद दिलाते हुए कि मानव ईश्वर की छवि और समानता में बनाया गया है। संत पापा ने आगे कहा, यह गरिमा संस्थाओं और सरकारों से नहीं मिलती, बल्कि यह अंदर से आती है और जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए यह हर सच्चे सामाजिक रिश्ते की नींव बनती है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें की इस बात का हवाला देते हुए कि विश्वास कविता और संगीत बनाता है और सौंदर्य बनाता है, संत पापा लियो ने उन अनुभवों के बारे में बात की जो लोगों को अंदर से बदल देते हैं। एक गाना, एक कविता, एक गिरजाघर, एक आवाज, एक नजर और दोस्तों के बीच साझा किया गया एक खेल भी। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, जो खुद एक एथलीट थे, के शब्दों को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि खेल एकता, शांति, सामाजिक मेलजोल का एक मजबूत सबूत दे सकता है। ऐसे समय में जब हिंसा और बंटवारा समुदायों को एक साथ रखने वाले रिश्तों के लिए खतरा बन रहे हैं। अपना भाषण समाप्त करते हुए संत पापा लियो ने वहां मौजूद सभी लोगों से एक नए समाज को बनाने में हीरो बनने की अपील की। उन्होंने कहा, एक ऐसा समाज जहां समय हमेशा के लिए खुला रहे, जहां संस्कृति यादों को संभाल कर रखे और बातचीत को बढ़ावा दे, जहां शिक्षा बौद्धिक ईमानदारी के साथ सच का पीछा करे, जहां कला आश्चर्य जगाए, जहां व्यापार हर इंसान की गरिमा को पहचाने और जहां काम उम्मीद का जरिया बना रहे, क्योंकि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इंसानियत की सच्ची महानता चमकती रहती है या नहीं। आइए हम जीवन के सभी हिस्सों में तालमेल बिठाने वाले नए नेटवर्क बुनने के लिए नए हीरो बने। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा ने सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और रात्रि विश्राम के लिए मैड्रिड के प्रेरितिक राजदूतावास लौट गए।

0: करने की योग्यता रखें। हर सत्य को घोषित करने की जो हमारे प्रांत में है, अपने को नम्रता में बनाए रखना, जिससे हम न केवल समझते हों बल्कि अपने को साझा करते हों। इसे स्वाभाविक रूप में करने हेतु हमें चाहिए कि हम दूसरों की भाषा को सीखें, हम अपनी ओर से पहल करें और दूसरों के संग अपने को संलग्न करें, जिससे ईश्वरीय राज्य के बीज बोए जा सकें। उन्होंने कहा, यह प्रभु हैं जो हमें आगे ले चलते हैं। वे इतिहास और हमारी हर कहानी के स्वामी हैं। वे हमारा लय तय करते हैं। हम उनके पीछे चलते और असल में हम एक शरीर के सदस्यों के रूप में उनके संग चलते हैं। जीवन के लिए सिर्फ जरूरी चीजों को लेने के संबंध में संत पापा लियो ने संत पापा फ्रांसिस की बातों की याद दिलाते हुए कहा कि संरचनाओं की सुरक्षा को हम अच्छी बुलाहट के आगे नहीं रख सकते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण का अधिकार है और यह कलीसिया का अधिकार है कि वे बेहतर प्रशिक्षित पुरोहितों को अपनाएं। गुरुकुल वासियों को चाहिए कि उन्हें पर्याप्त समुदाय का अनुभव हो, उन्हें प्रशिक्षण देने वाले अध्ययन और शिक्षण में पूर्ण समर्पित हों, उन्हें आध्यात्मिक निर्देशन में सहचर्य का अनुभव हो और उन्हें ईश शास्त्रीय ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की हो। संत पापा ने कहा, हमारी यात्रा मिलन से बनता है, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जो जीवन के अंधेरे से होकर गुजरते और हमें भला सामारी होने की मांग करते हैं। इस मिलन की एक दुखद बात यह है कि उनमें से कई लोग याजकों के द्वारा अपने को घायल किया गया पाते हैं। हमें हर घायल व्यक्ति को ईमानदारी से सुनने, स्वागत करने, सुरक्षा और चंगाई हेतु सही मार्ग को चुनने की जरूरत है।
1: और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।